0: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर। जी हाँ, लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच। एक ऐसी ही शाम जो छू लेगी तुहाडी रूह नो।
1: मैं के अचन जी सलाम कहने
0: दिलानु टुंबन वाले मास्टर सलीम दे सूफियाना तरान ने अते हाई एनर्जी पंगड़ा बीट्स गुंजन गे 24 जुलाई नो। इवेंट्स दिनार ता फिर देर किस गल्दी, तारीख नोट कर लो 24 जुलाई। अपनी टिकटा आज ही बुक करो। लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते। स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लाई तुसी रोहन शर्मा नु कॉल कर सकते हो 647-783-9873। बस रेडी हो जाओ नचन गौन ते चूमन दे लाई सुरां दे बादशाह मास्टर सलीम दे नाल।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए।
1: सो 905-673-3337 सुख भाई जी भी साडे नाल जुड़ चुके ने, बहुत सारी कॉल्स आ रही ने, सो कॉल लैने उस तो बाद सुख भाई जी नाल जुड़दे हैं। जी पलविंदर जी, सत श्री अकाल, तुसी ऑनर हो। नोट कर लियो, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। 905-673-3337 साडी कॉल लग चुकी है जी। ग्रैंड होम फर्नीचर ते जिथे बहुत वड्डी सेल लगन जा रही है, तंबू सेल, सो जिथे बहुत सारियां थानू

0: सच कहे जे होंगा
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच्चे
2: मिट्टी चुगदी फसल सच्चे
1: गुरु दी पानी सच्च।

0: सारी बातें समझ में आती है, उसमें उसके लिए आपको एक गुरु चाहिए समझाने वाला, क्योंकि जब शिष्य यानी शागिर्द अटक जाता तो फिर गुरु ही आगे बढ़ाता ना, नहीं तो कौन बढ़ाएगा। तो ये निजाम है, ये ऊपर वाले कुदरत है, आपको पढ़ाने वाला कोई होता ताकि आप अटक गए तो पढ़े आगे, ये है बात।
1: बहुत
0: बहुत शुक्रिया जी, आपका भी जनाब अच्छे अच्छे चीजें याद दिलाते तो आपकी नजर कर देता हूँ फिर एक दफा सबको मेरी तरफ से।
2: सस्काल
1: जी, बीबी गोसल जी, सस्काल
3: बहुत
1: ज्यादा हाँ, तुसी भिजन भुजन तो बच गए। कई बार हुंदा ना कि गर्मियां दा पहला मीह पिया ते लोग जदों पहला मीह पवे ना ते बारिश दे विच एंजॉय भी करदे ऐ। कल ते ना मतलब सारा कोई बंदा ऐसा नहीं सी जेड़ा ना घबराया होवे विच। बहुत खुला बहुत खुला एरिया जी, बहुत
3: मेनू एडमिंटन याद ही रहना हर वे हूं भी मैं
1: चलो तुम घूमते रहते हो जी, बहुत भागा वाले हो ते तुसी यात्रा सैर सुर करते रहते हो ते चलो चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सस्काल जी, कुलदीप जी, सस्काल
4: जी,
1: वधिया बहुत वधिया बिलकुल ठीक ठाक है, तुसी सुनाओ। छोटे छोटे होंगे ना आसमान जहाजा वेहने होंगे बस होर कुछ नहीं इस तू वी बच्चा ने वेखो कि बच्चा नु सानू सैर पहुंचाता बच्चा ने बिलकुल वर्क ओरिएंटेड कंट्री है, काम करने वाला बंदा इत्थे मैं महसूस किया भी काम करने वाला कामयाब ही कामयाब है, ओनू कोई कमजोरी नहीं किसी किस्म दी,
4: ओ बंदा नहीं मरदा जी काम करने वाला,
1: नहीं मरदा बिल्कुल नहीं मरदा,
4: बड़ा मोटा कर लेता तां भी कोई ना जी।
1: हां बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो शुक्रिया जी, अच्छा कबीर पार्क यूनिवर्सिटी के सामने। हां चलो कोई नहीं, मिलांगे जी किसी दिन, मुलाकात हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो दोस्तों 647-367-5353 साढ़े स्टूडियो का नंबर है, तो तुसी गलबात करनी होवे तो फोन नंबर तुहाड़े वास्ते भी है 647-367-5353। साढ़े प्रोग्राम दे प्राउड स्पॉन्सर ब्रम्पटन कैश एंड कैरी

भावे सौ सौ गो ते गोते दाउंदे जी भावे सौ सौ गंगा गया गल मुकदी नहीं हो।

0: शादी दी मूवी बनवान ले या रिंग सेरेमनी ले वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ले याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251 416-930-1251
1: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ
2: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ
0: ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
2: 416-717-2929
0: 416-717-2929 ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ ਯੂਨਿਟ 4 ਇਟੋਬੀਕੋ
3: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर जी हाँ लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच
4: मैं के अचन जी सलाम कहने
3: सिर्फ ते सिर्फ मिलना इवेंट्स दे नाल ता फिर देर किस गल दी तारीख नोट कर लो 24 जुलाई अपनी टिकटा आज ही बुक करो लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा अते प्रभ संधु नु कॉल कर सकदे हो 647-783-9873 या 437-870-0001 ते

टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर देंगे पंजाबी विरसा 2026 टोरंटो शो सैटरडे 25 जुलाई नो थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: क्या बात है भाजी, क्या बात है,
1: शाह समी साहब
0: बहुत बुलंद आवाज है, मजा आ जाता जी जो भी
1: तुम भाई। धन्यवाद श्रोते भी, बहुत धन्यवाद भाजी, तुम इन्ना प्यार दें, श्रोते भी बहुत प्यार दें भाजी
0: जी। थैंक यू भाजी,
1: थैंक यू सो मच मेरा भरा
0: जी। सो नाइस ऑफ यू भाजी, सो नाइस ऑफ यू। मांगड़ साहब तुम्हारी कॉल है जी ड्रॉप हो गई, दोबारा कॉल कर लियो, अगली कॉल से चलता। 3645 जी स्वागत है जी।
2: हां जी शमी जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल भाजी, किदा हाल चाल?
2: ठीक है शमी जी, मैं थानू गल दसा, मैं ना जद जोरां ते सीगी, चोरियां बहुत जोरां ते सी,
0: हां जी जी।
2: ए पता ए जेडियां कांडा, ए कुछ कांडा कारां दियां जिन्हां दी चोरी हुंदी सी
0: जी जी,
2: जेडी सारियां दी नहीं हुंदी सी। मैं नवी इक कार लई सी उस वेले, होंडा अकॉर्ड।
0: अच्छा जी,
2: ए देख ला तुसी, मैं अगे बाहर खड़ी रखनी, बारे हुंदी सी।
0: अच्छा जी,
2: साडे दो गुआंढियां दी, साडे दो गुआंढियां दी चोरी होईयां, ओ पता नहीं की गल, ओनू किसे ने हाथ नहीं लाया।
0: अच्छा।
2: कदे भी एक दिन डोर भी ओदी, जद किते रात नू आए ओ, ओदी डोर ओ खोल गए, पर ओ पता नहीं ओ नी चोरी उन्होंने किसे ने नहीं कीती, ओ बाहर खड़ी रही। मैं हैरान सगा, मेनू उन्होंने कहना अंदर खड़ी कर देगा। मैं कहा तेल बहुत खांदी है यार, बहुत ज्यादा तेल खांदी है, कोई कोई गल नहीं है।
0: अच्छा तुसी ब्रांड न्यू लीती सी जां सेकंड हैंड?
2: ब्रांड न्यू
0: लीती। अच्छा अच्छा,
2: ब्रांड न्यू लई सी, लई भी मैं तकरीबन कैश।
0: अच्छा जी,
2: थोड़े बहुते रखे जी, 10-15 हजार बाकी फैसले। किसी ने नहीं हाथ लाया, पर मैं ये देखिया, ये जेडी जिदा रेंज रोवर हुई जा होर हुई, उन्हां दी ज्यादा चोरी होनी सी, जेड़ा उन्हां नूं पता सी वी गाह नहीं है, नी बैल जी, ओ नहीं चोरी हुई।
0: सही गल।
2: बाकी शमी जी जेड़े तुसी आ कहना, ओ कहना होना भाई शेर जरा कहना होना, ये गधा आ, तू तो सियाना हैगा ही
0: है,
2: हूं तक कहना ही
0: है। सही गल,
2: तू कहते बहसदा, ये गल हो सकती।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जिंदगी दे सबक है भाजी, छोटे छोटे किस्से सानू यही है, जे हर एक नाल आपां बहसन लग पांगे तां जिंदगी ते अगे नहीं वध सकांगे आपां।
2: ਹੋਰ ਸ਼ਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ
0: ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ।
3: ਸਮੇਂ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ।
0: ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ
3: ਭਾਜੀ?

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड, टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने, 2 इन ब्रैम्पटन, 1

0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557।
4: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
5: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई आज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।
3: टेक स्पिरिट, हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही। टेक स्पिरिट 905-621-4100। तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है, तुसी अगर करे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करवाना, वेरी प्रोफेशनल टीम। टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो। SS Lawn Care थोड़ी लॉन दी संभाल दे लई बेस्ट चॉइस। तुसी नवा घर लगवाना चाहुंदे हो या सॉड इंस्टॉल करवानी चाहुंदे हो, सीजनल ग्रास कटिंग, फर्टिलाइजर, वीड दी ट्रीटमेंट अते हर एक किस्म दी लॉन दी मरम्मत दे लई तैयार हन। फ्लावर बेड बनवाओ या साफ करवाओ अते प्लांट्स दी ट्रिमिंग भी करदे हन, चाहे होवे रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फार्म हाउस दा काम। अज ही कॉल करो 437-655-1984 4 437-655-1984।
6: Get ready! GTA, are you ready for the

0: Metro 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection Steels and Kennedy 9054512600.
1: Hello bro, kithe hai tu?
2: Main client nu milan ja reha. Soch reha si Tim Hortons ch baith jaiye.
1: Oh yaar, ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unnanu. Private booths ne full privacy mildi hai. Free wifi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai te khana bhi bahut vadhiya.
2: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
1: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी हमें कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600

0: 40
1: याद है मेनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी किन्नी परेशान हो गई सी मैं इंश्योरेंस नाल डील करना गड्डी पेंट कराना किन्ने झंझट थैंक्स करदी हां मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221
2: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी हां ब्रो फूड वाज अमेजिंग फ्रेश हॉट ते फुल टेस्ट वाला गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए सर्विस भी टॉप नॉच सी टाइम ते डिलीवरी प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी करीज रोटी राइस एवरीथिंग वाज परफेक्ट ऑनेस्टली असी ता हुन हर फंक्शन ले तवा किचन ही चूज करांगे Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
3: पापा पापा सुनते क्यों नहीं चॉकलेट लेनी है
4: अजी सुनते हो कहाँ गुम हो
5: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए पता नहीं मीटिंग थी हेलो हेलो हेलो
6: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap
2: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: अमिताभ बच्चन साहब ही हॉस्पिटल च एडमिट है भाई, एज दे लो कैसी पटा साहब।
1: हाँ जी,
0: किन्नी कमाल दी गल, मतलब कि बंदा सारी उम्र कमांदा रहिंदा है।
1: बिल्कुल,
0: मैनूं हल तक ये नहीं समझ आती आपां कमाने किहदे वास्ते हैं। सारी जिंदगी बंदे ने कमाया हुआ, एंड ऑफ दे हॉस्पिटल बैठा बंदा ते पिछे छड़ गया
1: सब कुछ।
0: 905-673-3333 केड़े साल च मूवी आई सी, किसे नूं याद आ वीर मेरे ओ? प्यार करांगे फिजाओं में, कहंदा जिथे है आले दुआले सारा प्यार दा रंग ही चढ़िया होया। बड़े जो सॉन्ग मैन। हेलो
2: भाई, सत श्री अकाल जी।
0: आओ जी, की हाल है प्यारे हो?
2: बहुत वधिया, बहुत वधिया।
0: अरे एक है नहीं सोहनी क्यों हुंदी सी ओदा भाई?
2: अरे भाजी सब कुदरत दी खेड है जी।
0: अच्छा, कुदरत दी खेड है जी। हां
2: बिल्कुल बिल्कुल जी, टैलेंट वगैरह खूबसूरती है सब कुदरत दी खेड है जी।
0: आ मूवीज नाल जेड़े बंदे आंदे हुंदे खूबसूरत है ना, ओदा दा बंदा
2: आए। बिल्कुल, ये मूवी आई सी सन 1981 दे विच।
0: 1981 दे विच?
2: हां जी,
0: बड़ी पुरानी मूवी यार ये तां फिर ना।
2: मैनूं सिर्फ 2 साल होए सी दुबई गए नूं।
0: अच्छा, तुसीं दुबई सी पहले?
2: हां जी हां जी।
0: चलो सुनो गाना फिर।

0: एक रह गई है कुलदीप जी, नहीं तो पता है वो वापस आ जाएंगे मेरी पिटाई करने के लिए। क्यों लेब ऐसे बता, खास करके आपको पता है कि इन इनसे तो पंगा लेना नहीं चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको मैंने बीच में रोक दिया। कुलदीप जी थोड़ा भी वेलकम पंजाबी वर्षा है जी। वकार खान साहब आप बोलिए
1: जी। जी सर, अरजीत जी, इंटरनेट की भी बहुत ही स्पेशल प्रमोशन है, 1500 और 2000 की स्पीड वाले रॉजर्स इंटरनेट बहुत चीप प्राइस पर दिला देंगे। रॉजर्स सेल फोन की भी अमेजिंग ऑफर है मेरे को, कैनेडा यूएस अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, आईफोन और सैमसंग भी स्पेशल प्राइस पर अवेलेबल है। प्लीज कॉल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, नंबर है 6478648647 8648648000। असी 18 साल से रॉजर्स दे कॉर्पोरेट इम्पलाई हाँ, तुहाडा अकाउंट और एड्रेस चेक करके बहुत वधिया प्रमोशन दिला देंगे। नंबर अगेन 6478648647 8644 8000।
0: बड़ी मेहरबानी वकार खान साहब, एक बार नंबर आप फिर से दे देंगे, अगर किसी ने रॉजर की डील लेनी हो तो वकार खान साहब के बात करें। नंबर बोलिए प्लीज एक बार फिर, 647
1: नंबर 6478648647 6478648000।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500 416-817-6500।
3: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets si pal de vich Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services di pal de vich puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages vi milde ne pahunchna va ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over
4: Aaj
5: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करने नू वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी आला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिए था?
6: क्या कह रहे हैं यहाँ पर?
5: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
7: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
5: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा?
8: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
9: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888। दैट्स 905-460-8888।
8: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
10: विमला विलेज ला विलेज पढ़ दी पीओ च जंट पढ़ दा। विमला विलेज ला विलेज विमला विलेज ला विलेज पढ़ दी। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनो दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 4 7 5 1 2 7000 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਮੇ ਜੋ ਹੈ ਫਸ ਚੁਕਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਅ ਲੋ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਲੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ?
1: देखिए प्राइवेट मॉर्गेज तो पहले तो प्राइवेट मॉर्गेज लेना कोई गलत बात नहीं है, राइट? वो आपकी सिचुएशन के ऊपर है, स्पेशली आपने कंज्यूमर प्रपोजल या बैंकरप्सी की है, आपका लो क्रेडिट है तो आपको प्राइवेट मॉर्गेज मिलेगी, फिर आपको बैंक से मिलना मॉर्गेज मुश्किल है, है ना? सिचुएशन हर इंडिविजुअल की सिचुएशन अलग है, बट यू नॉट मैरिड विद प्राइवेट मॉर्गेज, ऐसा नहीं है कि आप 4-4 साल से मॉर्गेज लेके बैठे हो प्राइवेट। सो प्राइवेट मॉर्गेज इज अ सोल्यूशन, इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, 6 महीने या 1 साल किरण जी आप करके बाहर निकल आओ, है ना? उसके लिए इफ यू नीड अ प्राइवेट मॉर्गेज ऑलरेडी ले रखी है तो माई जॉब इज टू गिव यू एडवाइस कि आप कैसे यहाँ से 6 महीने में 1 साल में बाहर निकलोगे और कैसे आपकी आप नॉर्मल बैंकिंग के थ्रू आपकी मॉर्गेज होगी। इसके अलावा देखें आप सिचुएशन, आपको उस सिचुएशन में ऑलरेडी आप हैं और जहां पे आपको बहुत हाई प्राइसेस देना पड़ रहा है, तो मैं आपको बोलूं कि प्राइवेट मॉर्गेज रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 5.99%, यू हर्ड इट राइट, 5.99 एक मतलब बी लैंडिंग के रेट्स होते हैं या ऑलमोस्ट कोई कमर्शियल मॉर्गेज के रेट्स होते हैं, तो वो रेट पे आपको प्राइवेट फाइनेंसिंग मिल सकती है। आपकी सिचुएशन है कंज्यूमर प्रपोजल या बैंकरप्सी की है या फर्स्ट मॉर्गेज मिस की है, आपने 2-3 महीने की पेमेंट भी मिस कर चुके हो, आपको परेशानी के घर कहीं निकल ना जाए, पावर ऑफ सेल पे ना चले जाए, तो उसके लिए प्राइवेट मॉर्गेज हेल्प करेगी। और प्राइवेट मॉर्गेज वंस अगेन, ऐसा नहीं है कि आपने इसको 2-3 साल के लिए रखना है, शॉर्ट टाइम के लिए रखें, विद इन 1 ईयर रीफाइनेंस करके आल एबल टू हेल्प यू आउट टू द बी साइड, बैंक साइड या ऑल्टरनेट लैंडिंग साइड। तो वंस अगेन जैसे आपने किरण जी बताया, माई सेल्फ एंड टीम आर हियर टू हेल्प यू, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, विद इन 48 आवर्स आपके फाइल रिव्यू करके आपको कॉल मिलेगी और क्रेडिट पुल राइट अवे कभी नहीं होता है, हमेशा विल मेक श्योर दैट यू क्वालिफाई फॉर अ मॉर्गेज बिफोर वी पुल योर क्रेडिट। सो वी आई एम हियर इन मिसेस आगा एंड डेरी, दिस इज मुकेश चौहान मॉर्गेज ब्रोकर, नंबर जी 6475127000 6475127000। किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, और जे तुसी सेल्फ इम्पलॉयड भी हैगे और जे तुसी जेड़ा जी ट्रक ड्राइवर हैगे आ, भावे जो मर्जी आ, तुसी जेड़ा जी मुकेश चौहान दे नाल एक वारी जरूर गलबात कर सकदे आ। 6475127000 6475127000 ते इना दे नाल जेड़ी आ जी गलबात हो सकदी है।

0: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, RE/MAX Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
1: कमाल दा कैसी यार यकीन ही नहीं होंदा
2: तिनु इधर ते यकीन नहीं होंदा तू ए सुन सेव ऑन एनर्जी वाले फ्री इलेक्ट्रिक हीट पंप ते रहने जे तो हद कर विच इलेक्ट्रिक जो ऑयल हीटिंग है
1: इस गल ते मेनू पूरा यकीन है ओते इंस्टॉलेशन दा 100% खर्चा भी आप देंदे ने ते जे तुहाडे घर विच ऑयल हीटिंग है ते ओ ऑयल टैंक भी फ्री च बार कर देंगे नाले हीट पंप तुहाडे हीटिंग बिल्स 50% तक कटा सकदे ने
2: तिनु ए सब किमे पता
1: क्योंकि मैं भी पिछले साल ए लगवाया है
2: अच्छा ओ वेबसाइट ते ना की दसिया सी
1: सेव ऑन एनर्जी.ca/eap

0: चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन ते गुरुद्वारे बाय प्लाजा दे विच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 647-349-3521 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट।
2: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले लई।
3: लेनिया हो या चार बिजनेस ले जाना होवे या फिर कुमन ले इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ भी रीजनेबल प्राइसेस ते। स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा। कॉल 9056781200।
4: आखिरी अपील साडी रद्द हो
5: गल हवे रियल एस्टेट सेल परचेज ऑफ बिजनेसेस कमर्शियल ट्रांजैक्शन विल पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर एफिडेविट दी ता सोचन दी लोड़ नहीं। इको नाम याद रखो लॉ ऑफ अमन शर्मा जो अपने क्लाइंट्स नु देंदे ने एक्सीलेंट लीगल सर्विसेज। अमन शर्मा LLB बैरिस्टर सॉलिसिटर एंड नॉटरी पब्लिक 25 चेरीक्रेस्ट ड्राइव यूनिट 6 ब्रैम्पटन। कॉल 905-913-2355 9059132355।
6: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो ता ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीयां चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ। चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्क ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन। वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900।
7: रात में छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो?
8: मैं चलिया स्काईडम ऑटो ते बॉडी सेंटर जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है जो करनगे मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होण ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी करदे ने। स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालां तो तुहाडी सेवा विच।
7: भाई ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
8: कॉल करो 905-874-9878।
9: बंबा गया मैं जिथे जावा मुंडे कहंदे बंबा गया।
10: जी दोस्तों तुसीं जिहड़े रेडियो प्रोग्राम सारंग दे नाल मैं तुहाडा होस्ट दोस्त राजबीर बोपरा प्रोग्राम दे विच साथ बने रहेगा। 2 बजे तो लैके 3 बजे तक दा अज प्रोग्राम दे विच गल्लां बातां होणगीआं। कहानी बुधवार दा दिन बई कई दिन हो गए सी कहानी नहीं सी सुनाई। कहानी लैके भी तुहाडे रूबरू होणे आ। कहानी दे नाल गल्लबात तुहाडे नाल सांझ पावांगे कहानी दी। सो अज दे प्रोग्राम दे विच मोना मैंगी जी हाजर कौन हुंदे उहनां दे नाल भी गल्लबात करदे आ। कुझ इक गल्लां बातां तुहाडीआं ते साडीआं ते नाल दी नाल ही जिहड़ी मेन खास गल्लबात आ स्वर्ण सिंह टाणा साहब उहनां दे वल्लों जिहड़ियां खबरां तुसीं बहुत प्यार दिंदे हो उह खबरां ने जिहड़ियां ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਸੁਖੀ ਨਿਜਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰੀ ਆਈ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੰਗ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੁਣੋਗੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਉਡਾਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਕਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅੱਜ।

पक्कियां पकाइया खान नू रातों के फेरनी माला पक्कियां पकाइया खान नू रब दा

0: ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
1: ਫੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: study visa, express entry, Canadian express entry, spousal file, parents PR, super visa, nanny, work permit, farmer, investor, ya self-employed di file, gal ki, immigration di har problem da solution lai lai, community de jane pehchane, ate tajrubekar immigration consultant, Gary Virk nu milo.
3: Koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya, hove immigration da koi bhi masla, hamesha yaad rakho, ikko hi na, ate ikko hi tha. CIC Immigration, hune hi call karo, 416-456
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3081 ते 416-457-3381
4: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.desparadesradio.com ਜਾਂ www.desparadestv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना बहुत सौखा है, पर सही सपोर्ट तो बिना काम करना बिल्कुल सौखा नहीं। इंश्योरेंस फील्ड दे हजारा लोग आते ने ते हजारा ही जाते ने, पर सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर ही टिके रहते ने।
1: जेकर तुसी एक लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट से ले सही पॉलिसी ते प्रोफेशनल काम करना चाहते हो, तो फिर आज ही टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू नाल संपर्क करो।
0: कॉल 416-457-3381 416-453-3381।
1: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड यूनिट 11 ते लोकेटेड है, जिथे एडवाइजर्स ले बिना कोई फीस बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज अब पूरा एक्सेस है।
0: टॉप फाइनेंशियल दे इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे ले पहले ही दिन तो हाईएस्ट कमीशन पैकेज डेली इन ऑफिस ते ऑनलाइन ट्रेनिंग ते हर एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी दे नाल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दा भी प्रबंध है।
1: हाँ, इंश्योरेंस एडवाइजर चाहे नवे हो या पुराने, चाहे एक्टिव हो या पार्ट टाइम, या फिर तुसी सब तो वधिया ब्रोकरेज दी भाल विच हो, अज ही संपर्क करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल 416-457-3381 416-457-3381।
2: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
3: टुडे विच लाइव गलबात कर ले हुणे कॉल करो 905-564-6444।
2: 905-564-6444।

0: क्या यार पेशकार ये है, लगता ही नहीं कि कोई गीत सुन रहा है, लगता जिवें कोई तुसी फिल्म ही देख रहे हो। सो जिहड़े कलाकार अपनी गायकी राही इदां ना तुहानूं फील करवाउण के कहिंदे हुंदे कि गाणा पिक्चराइज करा देण, ओह कोई कोई कर सकदा। सो प्रोग्राम है पंजाबी राणा ते कमल हीर मनमोहन वारस संगतार थोड़े लिए परफॉर्म कर रहे हैं बई इस सैटरडे 25 तारीख लाइव इन कॉन्सर्ट द ग्रेट कनेडियन थिएटर जो कि वुडबाइन कसीनो के अंदर है। बड़ा ही प्यारा, बड़ा सोहना, बड़ा खूबसूरत वेन्यू है। तो तुसी टिकटा नहीं लई तो लेट हो, पहली गल तो कुछ एक दिन बाकी ने। पंजाबी विरसा, पंजाबी विरसा यार दुनिया भर के एक ब्रांड है अपने आप दे विच, जो कॉन्सर्ट भी है पंजाबी विरसा 2026। पंजाबी विरसा तुसी हर एक साल ही सुनिया हुणे हुणे, मैं पंजाबी विरसा 2011 दा एक गीत ला के हटिया। सो पंजाबी विरसा एक तुसी हिस्ट्री दे विच शामिल हो रहे हो क्योंकि इस बार पंजाबी विरसा रिकॉर्ड भी हो रहा लाइव। सो लैके चलदे तुहानूं टीम फॉर एंटरटेनमेंट दे हरजिंदर गिल साहब कोल। ते हरजिंदर जी मैं हुणे ला के हटिया कमल हीर साहब दा महीना मई दा, ते मैं कहा कि यार कुछ की आर्टिस्ट ने जिहड़े एक ना अपने परफॉर्मेंस राही किसी गीत नूं पिक्चराइज करवा सकते हैं। लगता नहीं भी सिर्फ गीत सुन रहा, लगता जिवें तुहाडे माइंड दे विच एक वीडियो भी चल रही है नाल दी नाल। जी गिल साहब
1: बहुत मेहरबानी।